की रेण नित मंजल करहु जन्म जन्म की हम में मल रहम तस गौर कहो बुझाहो पखा महा अगन रेहा दे रखा तस गौर कह ग्रह टोबो पाणी जिस गुर ते अकगत जानी तस गौर कह ग्रह पीसो नीत जस प्रसाद बैरी समीत जन गौर मोको दीना जियो अपना दास रंग आपे मुल लियो आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तस गौर को नम करो नमस्कार काल कलेस पै परम दुख लाथा कौन नानक मेरा गुर समराथा है गौड़ी महला पंजवा मैल मेरा गोविंद अपना नाम देहो नाम बिना तरग तरग स्नेहो रहा ना बिना जो पहरे खाहे जो कुकर जूठ मैं पाए ना बिना जे तब हार जो मित्र को मिथ्या श्रृंगार नाम पसार करे रस भोग सुख सुफने नहीं तन हो रोग नाम त्या करिंगन काज हूँ बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत मना लाभेंगे कोट कर्म कर तो नरक जावेंगे।

रहो दुख अंधेरा करते मिटिहो हम गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो जन सेव्या सो पार परियो जन नानक गुरमुख जग तरियो महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत परम गय है मेरे मन सब सुख पायो रहो बलतो चलत तो क्या गुर चंदन शीतलायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दीपायो पापक सागर गह रोंग हर संत नु नाम तराय हो ना हम कर्म ना धर्म सच हूं प्रभु गह पूजा अपायो पाप खंडन दुख पंजनो भगत बसल करन आयो अनाथा नाथ कृपाल दीन समराथ संत टहलायो निर्गुण आरे की बेनती रह दर्श हर रायो नानक शरण तुहार सिंह ठाकर सेवक दुबारे आयो गौड़ी महला पंजवा हर संग विख्या के पोगा इन संग अंध न जानी हो संच हो तो कटता सगली अब्द बहानी रहा हो सूरा प्रदान हो को नहीं मुझे समानी जो बतबंत अचार कलीना मन में हो गुमानी जो और जो बाद बुद्ध का मरदा नहीं वसरानी पाही मीत बंद सखे पासे तनहु को सुबानी जित लागो हो मन वासना अंत साही प्रगटानी अहबल सच कर्म कर ए बधानी दयाल पर कृपा करो नानक दास दसानी जुमला एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद उरा गौड़ी पूर्वी संत मह

ben per koh jiva meri mai ben per ben nind na aave jiva kapad tan na suhavi kapad tan na suhave jan per paave gurmati chit laiye sada suhagun jan satguru sevhe gur kehe jan kusmaiye gur sabde mela tan fir raavi laha naam samsare नानक कामन हर नय प्यारी जा हर केहे गुण सारे सदा तन रंग माण है जियो अपने नाल प्यारे अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हमें मार है अनबिध मिलो मुयारे सा तन सुहागण सदा रंग राती सचे नाम प्यारे अपने गुर में रहिए अमृत गईये दुविधा मार न मारे नानक कामन हर पर पाया सगले दुख बसारे कामन फिरो पुली जियो माया मोह प्यारे झूठी झूठ लगी जियो कूड़ मुठी घटियारे कूड़ न मारे गुरमत सारे जूहे जन्म न हारे गुर शब्द सेवे सच समावे विचो में मारे हर का नाम हृदय बसाहे ऐसा करे सिंगारो नानक कामन सह समाणी जिस सच्चा नाम उधार हो मिल मेरे प्रीतमा जियो हो तुद बिन खरी नमाणी वह नैणी नींद न आवे जियो पावे अन्न न पाणी पाणी अन्न न पावे मरिए हावे बिन पर को सुख पाइये गुर अगे करो बेनती जे गुर पावे सो मिले दिवे मुलाइये आपे मेल सुखदाता गप मिलिया कर गाए नानक कामन सदा सुहागण ना पर हमरे न जाए गौड़ी महला तीजा कामन हर रस भेदी जियो हर के सह सवाए मन मोहन मोहली हा जियो द्विधा सह समाए द्विधा सह समाहे कामन वर पाहे गुरमति रंग लाए एह शरीर कूट कोस्त भरिया गल तई पाप कमाए गुरमुख पात जित सहज तन उपजी बिन भगती मैल न जाए नानक कामन परे प्यारी बिचों आप गवाए कामन पर पाया जियो गुर कहे पाए प्यारे रैन सुख सुती जियो अंतर ही उर धारे अंतर ही उर धारे मिलिए प्यारे अंदन दुख न मारे अंतर महल पर रावे कामन गुरमती विचारे अमृत नाम पिया दिन राती ही हिंद विद्या मार न मारे नानक सच मिली सुहागण गुर के हित अपारे आवो दया करे जियो प्रीतम अंत प्यारे कामन बिन करे जियो सज शब्द शिंगारे सज शब्द शिंगारे हमे मारे गुरमुख काम सवारे जुग जुग ही को सच्चा सोही बूझे गौन विचारे मन मुहकाम व्यापी मोए संतापी किसी अगे जाए पुकारे नानक मनमुख थौ न पाहे बिन गुर अंत प्यारे मुद याणी भुली नो गुणिया जियो पिर गम अपारं आपे मेल मिलिए जो आप बख्श आपे बख्शन हारं अवगुण बख्शन हारं कामन कंत प्यारं घट कर रहा समाई प्रेम प्रीत पाहे भगती पाई है सतगुर बुझ बुझाई सदा आनंद रहे दन राती ही आंदन रहे लवलाई नानक सहजे हर बर पाया सा तन नौ निध पाई गौड़ी महला तीजा माया सुर सुबल बरते जियो क्यों कर दोतर तरे आ जाई राम नाम कर बोधा जियो शब्द खेवट बिच पाई शब्द खेवट बिच पाहे हर गा पुन गाहे इन बिह दोतर तरिये गुरमुख भगत प्रापत हो बह जीव त्या उमरिये खिर मह राम नाम किल बह कटे पै पवित्र शरीरा नानक राम नाम नसतारा कंचन पै मनूरा ऐसरी पह काम व्यापह जी हो राम नाम की बद नहीं जानी मात पिता सत पाही खरे प्यारे जियो डू मुए बिन पानी डू मुए बिन पानी गत नहीं जानी होमे ता संसारे जो आया सो सब कुछ जासी उभरे गौन बिचारे गर्म कहो भे राम नाम बखाणे आप तरह कुल तारे नानक नाम बसे घट यंत्र गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थर नाही जो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच ही जियो राम नाम व्यापारा राम नाम व्यापारा गम व्यापारा गुरमति तन पाइये सेवा सुरत भगत है सची बिचों आप गवाइये हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाहे नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंदन हर गुण गाए आप कराहे करें आप
ਜੀ ਹੋਂ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜੀਓ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪੇ ਦਾਨਾਂ ਆਪੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਕੱਟੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧੁ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੱਚੇ ਬਿਟੋਂ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਾਜੀ ਹੋਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਵੰਝੋਂ ਦੂਰ ਨ ਜਾਹੇ ਰਾਜੀ ਹੋਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹਰ ਪਾਏ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹਰ ਪਾਹੇ ਸਦਾ ਚਿਤ ਲਾਹੇ ਸਹਿਜੇ ਸਤ ਸਭਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਸਵਾਲੀ ਜਿਸਮੂ ਆਪ ਕਰਾਏ ਨਾਮੋ ਬੀਜੇ ਨਾਮੋ ਜੰਮੇ ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਹੀ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਬਿਰਾਜੀਓ ਜਾਂ ਚਾਖੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਾਸ ਚਖੁ ਮੂਹੇ ਜੀਓ ਅਨਰਸ ਸਾਧ ਗਵਾਏ ਸਦਾ ਹਰ ਰਸ ਪਾਹੇ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹੇ ਰਸਨਾ ਸਬਦ ਸੁਹਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਹੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਵਲਾਏ ਨਾਮੈ ਅਭਜੈ ਨਾਮੈ ਬੰਸੈ ਨਾਮੈ ਸਚ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਈਏ ਆਪੇ ਲੈ ਲਵਾਏ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਚਾਕਰੀ ਪਿਰਾ ਜੀ ਹੋ ਤਨ ਛੋੜ ਪਰਦੇ ਸੁਦਾਏ ਦੂਜੇ ਕਿਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋ ਪਿਰਾ ਜੀ ਹੋ ਵਿਖਿਆ ਲੋਭ ਲਵਾਏ ਵਿਖਿਆ ਲੋਭ ਲਵਾਹੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਹੇ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਚਾਕਰੀ ਬਡਾਣੀ ਖਰੇ ਖਰੀ ਦੁਖਾਣੀ ਆਪ ਵੇਚ ਧਰਮ ਗਵਾਏ ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਟਿੱਕੇ ਨਾਹੀਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਦੁੱਖ ਸੁਣਤਾਏ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਤਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ਪਿਰਾ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਹੇ ਮਾਇਆ ਕਾ ਪਰਮ ਅੰਧ ਪਿਰਾ ਜੀਓ ਹਰ ਮਾਰਗ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਕਿਉਂ ਮਾਰਗ ਪਾਹੇ ਬਿਨ ਸਾਸੁਰ ਪਾਹੇ ਮਨਮੁਖ ਗਾਪ ਗੁਣਾਏ ਹਰ ਕੇ ਚਾਕਰ ਸਦਾ ਸਹੇਲੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਿਤ ਲਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਜਿਉ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਗ ਲਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

पूर्ण भगवान श्लोक अनक कर ज्ञान ध्यान मन हट मिलो ना कोई कहो नान कृपा पई भगत ज्ञानी होए बड़ी।

पौड़ी लल्ला ताके लवे न कहो इक आप अवर न हो होमन हार होत सद्याया पांका तना कहो पाया कीट आत मैं पुरुष माने प्रगट परख सावटाऊ जाने जाको दिनो हर रस अपना नानक गुरमक हर हर ते जपना श्लोक आत्म रस जय जानिया हर रंग सज मान नानक तन तन तन जन आए ते परवान रहो आया सबल ताऊ का गनिए जास रसन हर हर जस बनिए आए बसे साधु के संगे अंदन नाम त्यावे रंगे आवत सोजन न मेराता जाको दया मयावे दाता इकी अमन फिर जोन नाया नानक हर के दर्स समाया श्लोक जास जवत मन होए नंद बिनसे दूजा पाओ दुख दर्द तेना बजे नानक नाम समा बौड़ी जजा जारो दुर्मत दो तसे त्याग सुख सजे सो जजा जाहे परो संत सरना ए जे आसर ए पव जल तरना जजा जनु ना आवे सो एक नाम लै मने प्रभु

करा दबौड़ी डड्डा डेरा ए नहीं जे डेरा तय जाना उहा डेरा का संजमा गुर के शब्द पछान यहां डेरा कर सर्व कर काले ताका तसो नहीं संग चाले उहां डेरा की सो मित जाने जाको दृढ़ पूरन भगवान ने डेरा ने चल सच सा संग पाया

समाए। सलोक जैसा दो गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तो ना छुटे निकट ना जाइयो दूत बौड़ी। राणा रण ते सी जिए आत्म जीते कोय होमे अनस्यो लर मरे सो सो बाद होए। मणि मटाए जीवत मरे गुरपुरे उपदेश मनवा जीते हर मिले तें सूरत तनवेश। ना को जाने अपनो एक टेकदार रहन देन स सिमत रहे सो प्रभ बरगवार। हरेण सकल या मन करे इउ कर्म कुमाए हुक्मे मुझे सदा सोख नानक लिख्या वाए।

शरण परो हर राय ओकत सयानम सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सयानप छाड़े आना हिकमत हुकम न प्रपति आना

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरुदेव मन निरोतरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा

वेद प्राण सिमरत सदा कर किन राम नामिका कर किन काय जय जीव सावै ताकि महिमा गणि न आवै कांखी कह दर तुआरो नानक संग मोह उदारो सुख मनी

ने मुझे उभरे मरण काल का त्रास नवरिया उजो सदा हमारे पश्चा श्री अस्तुजू करे हो रशा राख लिहो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम पुरी

तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन कौ सेवकन सुख दियो सत्रण को पल मोह बध कियो घट घट के

तुम करो सिख उबार आसिख संगरो दुष्ट जिते वठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे।

जो ते प्रभु को ध्याए है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बिब विचार काश नाहे जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे दोहरा जब आयस प्रभु को भयो

जिसका सब साधारु, जे को खावै जे को पुंछै तिसका हुए उदारु। ए वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारू।

मनसा कर सिमरन तुझे नर, काम क्रोध मिटियो जो तिनं। बादशाह कर सिमरन तुझे तिन, दुख दरिद्र मिटियो जो खिनं। कर्म करत तौ

इतनी सेवा प्रवान कर लीजिए, कीर्तन कर दें, प्रहलादी माफी बख्श रही हैं। भाई साहब गुरमेल सिंह जी कैनेडा वाले आप जी लड़ीवार पितृबाणी कथा राही जोड़न गए, उन्होंने पास प्यार से सगन करो जी।

के सुना पुकार वो जानता ते है पर पुकार ओदे अगे बेनतियां हमेशा करते रहना चाहिए बेनती प्रवान कर लेंदा साडी विधि नूं जानता है। यही बचन सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास महाराज ने मुखातब करके धन गुरु अमरदास महाराज के सरमुख

माला तहु कछु ना व्यापे राम नाम गुण गाए डाकी को चित कछु ना लागे चरण कम सरनाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाय गुण दान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए असमला पंजमा।

चतुराय जा सब कश तुझे मजार। मेरे सतगुर अपने बालक रखो लीला धार। देस मत सदा गुण गावो मेरे ठाकुर अगम पार राओ। जैसा जहन जठर मैं प्राणी ओहर तरनाम आधार। नंद करे सा समार ता ना पोहे अगनार।

साहिब जी गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः अश्परी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन माह मिटावो सिमरो जास बसंबर एक नाम जप त्यागंत अनेक वेद प्राण सिमर सोदाखर किन्ने राम नाम क्या अखर किनका एक जह जीव सावे ताकि मेहमा गनी नावे कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम रहाओ प्रभु के सिमरन गर्भ नाम बसै प्रभु के सिमरन दुख जम नसै प्रभु के सिमरन काल पर हरे प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे प्रभु सिमरत किश बिघन न लागे प्रभु के सिमरन अंदन जागे प्रभु के सिमरन भाव ना व्यापे प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे प्रभु का सिमरन साधक संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध प्रभु का सिमरन जप तप पूजा प्रभु का सिमरन बिनसै दूजा प्रभु का सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभु कै सिमरन दरगे मानी प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सफल भला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु कै सिमरन सबके संजय प्रभु कै सिमरन नाहि जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिदमाए समाए प्रभु जी बसे साध की रसना ना

संत कृपा ते अंधन जाग नान सिमरन पूरे भाग प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे प्रभु कै सिमरन कबू न झूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन ने चले आसन प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन प्रभु कै सिमरन अरहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत ना पार सिमरे से जन जन को प्रभ मैया नानक तिन जन सुननी पया हर सिमरन कर भगत प्रटाए हर सिमरन लग वेद उपाय हर सिमरन पै सिद जति दाते हर सिमरन नी चौकुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल अकारा हर सिमरन में आप नंकारा कर कृपा जैसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ संत महरी आयो नानक प्रभ साथ अष्टपदी जाप ताप ज्ञान जाप जय मात पिता सुत मीत ना भाई मन ऊहा नाम तेरा संग साई जय मां भ्यान दूत जम दले तै केवल नाम संग तेरा चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माए उधारी अनक पुन है चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप तुहे सुखिया

नौ खंड पृथ्वी प्रेचर जीवे माम दास्त पीसर थीवे अगन माय होमत प्राण कन का सब हैवर भूम दान न्योली कर्म करे बो आसन जैन मार संजमयत साधन निमक निमक कर सीर कटावे तो भी होमे मैल न जावे हर के नाम संसर कृष्ण नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए।

का नाम जपो जी सदा। सगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जसुन रसन बखानी, सगल थान ते उत्तम थान, नानक जे घट बसे हर नाम श्लोक। निर्गुण आरे अन्या सो प्रसा संभाल, जिनकी अत चीत रख नानक निवि नाल अष्टपदी। रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कम दिष्टानी, जंतु साज सवार सिगारिया, गर्भगन में जिने उभारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोवन भोजन सुख सूद। बिरद प्या उपर साख सैन, मुख प्याओ बैठ को दैन, ए निर्गुण गुण कशु न बुझे, बख्श लियो तो नानक सीजे। जे प्रसाद धार उपर सुख बसे, सुत प्रात मीत बनता संगस। जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन भाव कमुला। जे प्रसाद भोगे सब रसा, सबल समग्री संग साध बसा, दीने हस्त भाव करन नेत्र रसना। तिसे त्याग और संरचना, ऐसे दोख मूड अंध व्यापे, नानक काट लियो प्रव्यापे, आदि अंत जो राखण हार, तिसो प्रीत न करे गुवार। जाकी सेवा नौ निध पावे, तासो मूड़ा मन नहीं लावे, जो ठाकर सद सदा हजूरे, ताको वंदा जानत दूरे। जाकी टैल पावे दरगह मान, तिसे बिसारे मुग्ध जान, सदा सदायो पूलन हार, नानक राखण हार पार। रतन त्याग कौडी संगरचे, सा छोड़ झूठ संग मचे, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर प्राणे छोड़ जाए, तिसका शर्म करे संसाई, तिस पर हरे चंदन लेप उतारे, तोये गर्त प्रीत पसम संग होए, अंधकूप में पतत विकराल। नानक कांड लियो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बार भेख अंतर मल माया, शब्द सुनाए किस करे छपाया।

सुनिंदा कैसे मार्ग पावे कर कह लियो ओण निभावे काम बुझारत बूझे डोरा निस्किए तो समझे भोरा काम विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तो ही सुरभंग।

ग्रहीत बलुआ के ग्रह भीतर वसे अंध केल माया रंग से दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल नावे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार मान लो त्रो याहू जुगत बयाने कई जन्म।

तुमरी कृपा में सुख नेरे, कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी। तुमरी गत में तुम ही जानी ना।

सुन मीता नानक बिनवंता साजना की आचार्य कथाष्पदी साध के संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग परडे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत नवेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध के संग वचन मिले साध के संग सदा प्रभुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सबकी रेन साध के संग मनोहर बैन साध का संग ना कथूं तावे साध संग अस्तित मन पावे साध के संग माया ते पैन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग मां पुनीत साध संग कैसे नहीं बैर साध के संग न बिगा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही होता अब साध के संग तजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नान साध प्रभु बनियाई साध के संग न कबू तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस्त गुचर लहे साधु के संग अजर सह साध के संग बसे थान उचे साधु के संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नान साधु कह कुर्बान साध के संग सब कुल उधारे साध संग साध निमीत कुटुंब निस्तारे साधु कह संग सोतन पावे जिस धन ते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु कह संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध कह संग सबल जन्म साध के संग नहीं कशकाल कशकाल दर्शन भेट तो होत निहाल साध के संग कलूक हरे साध कह संग नरक पर हरे साध के संग यावा सुहेला साध संग विशर तर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध का संग न मिर्था जावे पार ब्रह्म साध रिद वसे नानक उदरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मनते विसरे साध संग सर्पन निस्तरे साध के संग लगे प्रम मीठा साधु के संग कट कर डीठा साध संग पे आज्ञाकारी साध संग गत पे हमारी साध के संग मिटे सब रोग नान साध पेटे संजोग

ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मनो प्रकाश जैसे धरे उपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सदर समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाय मान ब्रह्म ज्ञानी हूं।

ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पैया, ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो महा, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुबल भला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह के रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम धार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अम्बुद त्यागत।

वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सारे सन।

ब्रह्म ज्ञानी सत सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सत जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरात।

तैसा हर्क तैसा उसोग सदा अनंत नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस्माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अपमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक उपर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जिस जिद कर राखे तैसा तिन्नाओ आपे करन करावन जोग प्रभ भावे सोई पुन होग पसरियो आप होय अंतरंग लखे न जाय पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता है बना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जाने अंत न पारा वार नानक रचना प्रवची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोड़ होए पुजारी कई कोड़ आचार व्यवहारी कई कोड़ पै तीर्थवासी कई कोड़ बन भरमे उदासी कई कोड़ वेद के स्रोते कई कोड़ तपीसर होते कई कोड़ आत्म ध्यान तारे कई कोड़ कव कह विचारे कई कोड़ नवतन नाम ते आवे नानक करते का अंत न पावे कई कोड़ भय अभिमानी कई कोड़ अंध ज्ञानी कई कोड़ किरपन कठोर कई कोड़ बैगातम निकोर कई कोड़ पर दर्व को हिरे कई कोड़ पर दुख न करे कई कोड़ माया शरमाए कई कोड़ पर देश प्रमाए जित जित लाभ हो तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोड़ सिद्ध जति जोगी कई कोड़ राजे रस भोगी कई कोड़ पंखी सर्प उपाय कई कोड़ पाथर बिरख ने बजाए कई कोड़ पौन पाणी वह संतर कई कोड़ देश भूमंडल कई कोड़ सस्य सूर नखत्र कई कोड़ देव दान मिंद्र सर चतर सर समग्री अपने सूद धारे नान जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे कई कोड़ राज तम सातक कई कोड़ वेद प्राण सिमरत रसास्त कई कोड़ किए रतन समंद कई कोड़ नाना प्रकार जंत कई कोड़ किए चरजी वे कई कोड़ गिरी मेर स्वर्ण थी वे कई कोड़ जकन प्रसाद कई कोड़ भूत प्रे सूकर मृगा सबते नेरे सब ऊते दूर नानक आप लित्रे आपरपूर कई कोड़ पताल के वासी कई कोड़ नरक सुर निवासी कई कोड़ जन्मे जीवे मरे कई कोड़ बहु जोनी फिरे कई कोड़ बैठ ही खाए कई कोड़ काले तक पाए कई कोड़ किए तनवंत कई कोड़ माया में चंतन

कईकोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिलियो प्रवनास कईकोट मांगे सतसंग पार रम तिन है लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई जूत कीनो विस्तार कई बार पसर बसार सदा सदा एक ओंकार कई कोट कीने वो पावन प्रभ ते होए प्रभ माए समाध ताका अंत न जाने कोए आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार के दास तिन हो ते आत्म प्रकाश कई कोट तत के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पे सद सदी जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सह समावे अपने जन को साथ साथ समारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे श्लोक कारण कारण प्रभ एक है दूसर नाई कोय नानक बलिहाल ने जल थल में यल सोए अष्टपदी कर्ण करावन करने जोग जो तिस भावे सोई होग इनमे था भू था पुनहारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे धार धर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब में रहा समाए प्रभ पावे मनुख गत पावे प्रभ पावे ता पादर त्रावे प्रभ पावे बिन सास राखे प्रभ पावे ता हर गुण भाखे प्रभ पावे ता पते धारे आप करे अपन विचारे दोहां सिरियां का आप स्वामी खेले विकसे अंतरजामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अब नावे कहो मनुख ते क्या होए आवे जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ होए तन सब किस ले जो तिस पावे सोई करे अनजान विख्या मैं रचे जे जानती आपने आप बचे पर मैं भूला दे दिस धावे निमकमाए चार कुंड पिरावे कर कृपा जिस अपनी भगत दे

कोरा जय सुबन मनोहर बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए वणपागी किसे प्राप्त होए। करण करावण करण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। करण करावण करने हार इसके हाथ का विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आपस होए। जो किन्नो सो अपने रंग सब ते दूर सबों के संग। बुझे देखे करे विवेक आपे कापे अनेक।

संग चरण चलो मार गो बिंद मिटे भाव जपिए अरबिंद कर हर कर्म सरुण हर कथा दर गए नानक उजल मथा बड़ बागी ते जन जग माए सदा सदा हर के कुंगाए राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार मंत्र मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत की ओ सोची जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपने आप सुझे तिसकी जानो तृष्णा मुझे सा संग हर हर जिसका सर रूप ते अर्जन रहत आन दिन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जे जन की आसा तिसकी कटिये जमकी भाषा पर ब्रह्म की स्मरण भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर परम मन चित आवे सो संसो हिला नहीं डलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किस डरे जैसा सा तैसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया

जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नान सो जन सदा रोग जो मंदिर को थामे थमण त्यों गुर का शब्द मने अस थमण ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरे प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुरदर्शन देख मन होए बिगा ज्यो महाध्यान में मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल जोत प्रटावे तिन संतन की बादशो धूर नानक की अर लोचा पूर मन मूरख काहे बिलाई है पुरब लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्राप्त देवन हार अवर त्याग तू तिसे जितार जोग करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे जान कौन बसताई तेरे संग लपट रो रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पद सेती कर जाए जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज मान लियो मन मोल राम नाम हृदय में तोर लात खेव संत संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल तन तन कहे सब को मुख उजल हर दर गह सोहे ओ पार बिरला पारे नानक ता कह सत बजारे चरण साध के धोत पियो अर्भ साध को अपना जियो साध के धूर करो स्नान साध ऊपर जाइये कुर्बान साध सेवा वड भागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये अनंग बिंग ते साधु राखे हर गुण गाये मुतरा चाखे और गई संत दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवालन हार पुखे को देवते आधार सर्वधान जाके दृष्टि माए पुरु लिखे का लहना पाए सबके तिसका वो करने जोग तिस्मिंदु सर हो अन हो जब जन सदा सदा तिन रहनी सब ते उच निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुरु की प्रती ते जन आवे हर पवचीत भागत भगत सुनिए ते लो ए जाके हृदय को ए सच करनी सचता की रह सच हृदय सतमुख है सची दृ सच आया कार सच वरते साचा पसार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता श्लोक रूप ना रेख ना रंग किश त्रह गुण ते प्रपिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अश्वरी मां अवनासी परमन में राग मानु की तू प्री त्याग तिसते परे नाय किसकोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सो जाना पारम परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सा तेरे की चढ़नी पाओ नानक मन अन्नाओ मनसा पूर्ण सड़ना जो जो कर पाया सोई हो हर बन जाका नेत्र भोर तिसका मंत्र ना जाने हो रण ध्रुव मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए करता के राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसर किस में भोगी त्याय त्याय भक्ता सुख पाया नानंद का किरे अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाहे सकल देव हारे अवगाए पिता का जन्म के जाने पूत सकल परोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जंदे जनदास नाम त्यावे से तय गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे जन तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेकरे करंग नाना बिदकीनो विस्तार प्राव अविनाशी एकंकार नाना चलत करे खिनमाए पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिद करवंत बनाई अपनी कीमते आपे पाए सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नानक हर नाओ

सेव के आज्ञाकारी ठाकुर का सेव सदा बजारी ठाकुर के सेवक कह मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेव जाने संग प्रभु का सेवक नाम कह रंग सेवक उपर पालन हारा सेवक की राके नंकारा सो सेव जिस दया प्रभु धारे नानक सो सेवक सास सास समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख ताकि कदमत कोय न लाखे प्रभु के सेवक को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा दिश पटाया निकी की री में कल रखे पसम करे लश्कर को लाखे जिसका सास न काटता आपदा को रख दे करात मान जतन करत भात के करता बिरथे जात मारे ना रखे अपन को ये सब जी आका रखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभाल खोडानी बार बार बार प्रभ जपी है पी अमृते मंथन त्रपी है नाम रतन जिन गुरु मुख पाया दिशक जम निष्ठाया नाम धन नमो रूप रंग नम सुकार नाम कसंग नाम रजो जंत्र ताने मंथन नमे नाम समाने उठत बैठ सोत नाम कहो नानक जन के सतकाम बोलो जाजे वा दिन रात प्राव अपने जन कीनी दात करे भगत आत्म के चाहे प्रभ अपने सो रह है समय जो आहो सो जाने प्रभ अपने का हुकुम शाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ से जुरे कौ नान से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मंतने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी सर्व सर्व

आवत कहू नर कहू स्वर्ग मन चावत आल जाल माया जंजाल हम में मोह भन पै भार दुख सुख मान अपमान प्रकार कियो बख्यान आपन खेर आप कर देखे खेर संकोचे तो नानक एक जह अवगत भगत आप जय बसरे बसार संत प्रताप दो पागा आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे अनंचो जापे रस भोगन निर्जोग जिस भावे तिस आपन न लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेसमार था अगंत तुले ज्यो मिलावो त्यो नानक दास बोले श्लोक जी जंद के ठाकरा आपे वर्तनहार नानक एको पसरिया दूजा कह दिष्टार अष्टपदी आप कुदे आप सुनने आपे का विस्तार जा तिस भावे तां सिष्ट पाए अपने भाणे ले समाए तुंते पहने किसोए आपन सूद सब जगत पर हुए जाको प्रभ जी आप जाए सच नाम सोए जन पाए सो सुंदर सी तत्का बेता नानक सर्व सृष्टि का जेता जी जंतर सबदा के हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखे तिस कोय न मारे सो मुआ जिस मनो सारे तिस तजा प्रका को जाए सब सर एक निरंजन राय

करन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपार हमरे दुष्ट सबै तुम गाव हो आप दे मोहे बचाव सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सेख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैर इनको आ सिंघरिये

सगल समगरी तुम रह सूत्र धारी तुम ते हो सोम तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास।

मेघ मेघ राम कसम को कर कर जय न जायो चरण कम शो पो न कि नैसठ पुर कम नायो तावल को तावे बपति जो तेले बल परमायो नाम लान स्नान न कियो एक नेमक न कीर्त गयो नाना जोट लाए मन तो क्यों न बुझ अपनायो पर उपकार न कबू किए न सतगुर सेव त्यायो पांच दूत रात संगत को मतवारो मधमायो करो बेनती सास संग हर भवत वश रसुण आयो नानक भाग भरियो हर पास राग लाश अपनायो टोली महला पांच जमान

अनक चित्र बहुत के छुट गए सामना जाए करे, जिसका बहुत से राधे कोटे संग करे। सगली सहल उठावत चाहे वहा तरे जोर सकत नानक गच नाई, प्रभ राखो शरण परे टोटी महला पंचमा। हर के

हाथ बाहु से ने पड़ियो ने पाकड़ो पायो संजोरे सोन मन सीख साधु जन सगले थे थारो सगले पराजित मिटो रे जा को लेहणो महाराज ने कर लो जन नानक।

निरवहर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद रासुही महला पहला चौप दे कर पहला पांडा तोय वै तू देवो तो तू देखो जाव दूध करम पुन सुरत समान होय नरास जमाव जपो तय को नामा अवर निराफल कामा राव ए मन हिटी हाथ करो फुन नेत्र नींद न आवे रसना नाम जपो तब मथिय इन वेद अमृत पाव मन सा पढ़ जित सरनावन पावन पाथ तृप्त करे ऊर्जा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहेब रवत रहे कहंदे कहे कहे कह जावे तुम सर अवर न कोई भगतहीन नानक जन जंपे हौ सालाही सचा सोई सुही महला पहला कर दूजा इक ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसे ना बाहर जाए अमर छोड़ कहे विख काए ऐसा ज्ञान जब हो मन मेरे हो चा कर सच केरे राव ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बंधन बांध्या सब जग पवे सेवा करे सोचा करोय जल थल मह राव रहसोय हमने चंगे पुराने कोय पर्वत नानक तारे सोय सुई महला पहला कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उजल कहा चिलकना कोटन कलड़ी मस तोतिया झूठ नौतरे जो सत हो वाते सजन सही नाल मैं चल दिया नाल चलना जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दसन रहा कोठे मंडप माड़िया पासो चितवी आह टठिया का मन आवे विचो सकनिया वगा वगे कपड़े तीर्थ मंज वसन कुटुर जिया का बने वगे ना कही अन्न सिमरुख शरीर में मैजन देख पलन से फल कम नवे से गुण ते गुण में हन थन अंदरे पार उठाया दुग्रवार बहुत अकेलोड़े नारहा हो चढ़ लंगा कैत चाकरियां चकियाँ और सियान बकेत नानक नाम समात वद छोटे जेत सुही महला पहला जापता

गुरवचन ने फल पाया सह के अमृत बोला नानक ऐसे लियो सौखरा प्यारा हम सह के रे दसिया सच खसम हमारा सुई महला पहला जनको पांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करे पसाओ दुख विसार सी सहसा मूले नाहे सर पर तार सी तना मिलया गुरियाए जन को लिखया अमृत हर का नाम देवे दिखया चले सतगुर पाए पवे न पीखया जाको मैल दूर दूजे निवे किस दर्द वाणी नाहे मूले पुछ किते संग छोटे।

पांडायात्मलीन तो चाह न होयसि गुरु द्वारे होय सो जीवायसि एत द्वारे द्वय चाह होयसि।

तू जल तल मय पर परलोन पर परलोन अभ्य सर्व समान रहा मानत राजे चेत चित तला त्रि सेव सरा कवा

मनुजा पौ सहलंग हम मैल परे दो कारियां रखोंगी अंग गुरु अमर सरन वलाया सवला ते कल वेकपांग हर दिना दीन दयाल प्रभ सत्संगत मिलो संग मिल संगत हर रंग वाया जन नानक मन तन रंग सुई महला चौथा हर हर के हर हर करे नित कपट कमावे हृदय शुद्ध न होए अन दिन कर्म करे बदरे सुपने सुख न होए ज्ञानी गुरबिन भगत न होए कोरे रंग कदे न चढ़े जे लोचे सब कोई राव जब दा संजम वर्त करे पूजा मन मुख रोग न जाई अंतर रोग महाअभिमान दूजे भय गुआई बार बेग बहुत तराय मनवा देता वै हो में ब्या प्या शब्द न चिन्ह फिर भै जो नहीं आवे नानक नजर कर

सतगुर प्रसाद गुरमन री खोज खोजाई हर हर नाम पदार्थ भाई मेरे मन हर हर सांत वसाई जिसना अगन बुझे।

राम सज रखिया और धारे दुर्धर तारे फिर भव जल तरना होई सच्चा सतगुरु सच्ची बाणी जिन सच विखालिया सोई सचे गुण गावे सच समावे सच वेखे सब सोई नानक सचा साहिब सची नाई सच निस्तारा हुई सची सतगुर सच बुझाया पतरा के सच सोई राम सच्चा भोजन पाओ सचा है सचे नाम सुख होई राम सचे नाम सुख होई मरे ना कोई गर्भ न जूनी बासा ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई सच नाई प्रगासा

विधाता सतगुर सेव सदा सुख पाया हर वस्या मन मुरारे नानक मेलै गुर अपने गुर के शब्द सवारे।

की हमारे सबल जाता। मेल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिरसमनासा विचासा होए निरासी, सोजन मिलिया हर वासी कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक तिस पग लावनो।

कह नानक हर पद मनाय अंत सहाय होए जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक हर पद मना निरपय पावै बास

0: दुख मिटर
1: रस मृत कछु बिघन न लागे
0: राखे सिमरन अंतन जागे
1: राखे सिमरन भउ ना व्यापै
0: राखे सिमरन दुख ना संतापे
1: राखे सिमरन साध के संग
0: संग दान नानक हर रंग
1: राखे सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ

कौके सिमरन अरहत चुनकार सिमरे से जन जिनको प्रभ में हर सिमरन कर पद प्रटाए हर सिमरन पैसे।

0: जन गत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: सत केवल प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी बाणी सत कर्म जाकी रचना सत
0: सत सत उत्पत
1: सत करनी निर्मल निर्मली सत नाम प्रभु का सुखदाई।

0: गया मन में सह
1: आपस को कर कछ न जनावे
0: नाम हृदय सत्यावे
1: मन बेचे सतगुर के पास
0: सेवा
1: करत होए न कमी
0: होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिसे आप करे
0: गुर की मने
1: बीस विश्व गुर का मन माने
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय

0: सदा सुख पाओ।
1: भवन से पूर्ण हुए आस
0: पाए आत्म परगास,
1: कर जाए बसे अविनाशी,
0: काटी जम फांसी,
1: तत्व विचार कहे।

0: सुत मीत कुटम अरबनता राज रंग माया विस्तार
1: कहो कवन छुटकार
0: अस हस्ती रथ सवार।

जब होवत प्रभु केवल तनी जब एक अरगम पार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए जब आप है आप अपनी जोत तरह।

0: संतना सुने शुभ वचन जिन जाता तिसकिए रहत
1: साधु सब कहत
0: जो जो ऐसो ही सुख मन अंतर बसे बार भी उही आप सत किया सब

0: खर्च करा।
1: आप भला करतू सरनी की,
0: आपे जाने अपने जी की।
1: आप साज धारी सब साच,
0: बोध बोध आपन संग राज।
1: ताकि गतमत कही ना जाए, इसका किया सब परवान। जो जाने ते सदा सुख होए,
0: हो
1: धनवंत कुलवंत।

0: आस हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नौ ना जाने मेरा अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक ले त्याय फिर अंगत गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याये जस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरी ऐ घर नौ निदयावे चाहे सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थयुणा जी सहाय दसा पातशाहां दी जोत धन धन श्री ग्रंथ साहिब दे पाठ दर्शन दे दार दा ध्यान तर खालसा जी साहेब बोलो जी
1: वाहेगुरु
0: पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता तिना प्यारियां सुचारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसा जी साहेब बोलो जी
1: वाहेगुरु
0: जिन्हां सिंघां सिंघणां ने धर्मे सिर दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तर खालसा जी साहेब बोलो जी
1: वाहेगुरु
0: पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा

नित नानक नाम त्याई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सात संगत बटभागी माई भाई, जिन्हां जिन्हां नूं समां मिलिया सतगुरां दे चरणां च बैठ के गुरु की बाणी, सुखां दी मणी, सुखमनी साहिब दे जाप कीते ने, सतगुरु मेहर करन आप सारिआं दी हाजरी दर प्रवान करन। नरों खुरु नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्श। सो आओ सतगुरां दीआं रहमतां भागां वाले हाँ, जिन्हां नूं गुरु की गोद मिली है, चरणां विच बैठ के जाप कीते सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जिन्हां के मन बिसरा। हर एक बंदा, हर एक इंसान जो भी आपां आए हाँ, गुरु तो इको एक चीज मंगते हाँ कि सतगुरु जी रहमत करो, सानू सुख बख्शो। पातशाह कहिंदे हाँ जरूर बख्शांगा, पर उसकी एक शर्त है। वो केड़ी है कि सुख ना ही रे हर भगत बिना। हरी दी भगती तो बगैर होर सारिया चीज़ा ही मिल जांदियां ने, पर जे सुख लैना है तो गुरु के चरणा विच बैठ के सतगुरां दा ध्यान धरके नाम जप के ही मिलता है, वरना नहीं मिलता। सो आओ जिस चीज़ की तगीर साहिबां ने की है, खास करके सारा हफ्ता अपना कम्मा कारां दे विच निकल जाता है, वीकेंड है, सनिचरवार एतवार छुट्टियां ने, वध तों वध समा कढ के गुर के चरणा च आ के बैठिया करो। सतगुर रहमत करन कोई वड्डी गल नहीं, ग्रीनवाज बख्शिश करन ओ दातां दे, ओ महान हन, उन्होंने उन्हां दी रहमत विच कोई देरी नहीं। महापुरख बचन करया करदे सन भाई सिख दे ढैण दे विच देरी है, गुरु दे बख्शन विच देरी नहीं। सो आओ गुरु के चरणा नाल जुड़िए। शाम दा दीवान जिस तरह आप सारे जानते हो 6 बजे शुरू होना है, रहरा साहब दा पाठ उपरंत कीर्तन होवेगा। इसे तरह अखंड पाठ रखे गए ने, जिन्हां दे भोग सवेरे 10 बजे पैने ने, उपरंत दीवान सजेगा। वध चढ़ के आ के गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करिए, सेवा सिमरन करके अपना जन्म सफला करिए। पाईए सतगुरां ने फुरमान किया है कि ऐ इंसान पई प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बड़ी। एको एक बारी है, 84 लख जून तो बाद मिली है, उसनों गवाईए ना। वध तो वध लाहा लईए, भुलां चुकां दी क्षमा। फतेह बुलाओ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

मिल प्रीतम सुख पाया, सगल गुणा गल हार, नानक गुरमुख पाइए हर स्यों प्रीत प्यार। हर बिन क्यों सुख पाया, देखो मन बिचार, हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार। हर जपिए हर त्याई है,

आपे आखे आपे समझे तिस क्या उत्तर दीजै, साज कहो तम पारग्रामी तुझ क्या बैसन दीजै। जैसे जल में कमल निराल मृगाई नासाणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम वखाणे। रहे एकांत एको मन वसिया,

बोलै जुग जुगता बिदसाई। हाटी बाटी नींद न आवे पर घर चित ना डुलाई, बिरनावे मन टेक ना टिकई नानक भूख न जाई। हाट पटन कर गुरु दिखाया,

कर जाने साचा नानक साचे भावे साचा किस कारण ग्रह तजियो उदासी किस कारण है भेख निवासी किस वखर के तुम वन जारे क्यों कर साथ लंघावो पारे गुरमुख खोजत पे उदासी दर्शन के ताई भेख निवासी साच वखर के हम वन जारे नानक गुरमुख

प्यार गुरमुख पाइए शब्द अचार शब्द भेद जाने जनाई नानक में जाल सुमाई गुरमुख धरती साचे साजी तिसमें उपत खपत सोबाजी गुर का शब्द रपी रंग लाए साज रतो पात स्यों घर जाए साज शब्द बिना पत नहीं पावे नानक बिन नावे क्यों साज सुमावे गुरमुख ऐठ सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरिए सच सुधि गुरमुख सारे अवसर विद जाने गुरमुख पर विरत नरविरत पछाणे गुरमुख तारे पारे उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते होमे जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते जोग जुगत विचार नाम रते पावे मुख द्वार नाम रते त्रै पवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते

गुण ज्ञान विचार बिन नावे बोले सब विकार नानक नाम रते तिन को जयकार पूरे गुर ते नाम पाया जाए जोग जुगत सच रहे समाए बहरे मैं जोगी परमा सुनिया सीचाचार गुर कै शब्द जो मर जीवै सो पाए मुख द्वार बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार नानक वड्डे से वडभागी जिन सच रखिया उर धार गुरमुख रतन लहे लिव लाए गुरमुख परचाए रतन सुपाहे गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पति आए गुरमुख लख लखाए ते सुभावे नानक गुरमुख चोट ना खावे गुरमुख नाम दान स्नान गुरमुख लागे।

सो सौ नदर करे आपे पिसे आपे कसे आपे लाए ले ए हो परम प्याला खसम का जय पावे ते दे पौड़ी वेके सिस्टो पाए न सब हुकम आवे जाए सुमाही आपे वेख आखे आपे वेख वेख सदा दूजा

सगुरु मिला सबद संभाले सगुर के सेवाए हो तप परवान नानक सोत पा दर्ग पावे मान पौड़ी राधन सोपान संसार की वर्तन गुरमते कट चानना अनेर बिना सुन हुक्म सब साजन रविया सब वाण त्रिण

सही कर्म करें जाए पुछो सिमर सास ब्यास सुख नारद बचन सब श्रेष्ठ करें सचे लाए सच लगे सदा सच संभालन नानक प्रवान पर जय सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंदुला सिख भी अंधे कर्म करें ओय पाने चलन अपने निज झूठो झूठ बोलें कूड़ को

पौड़ी सबनदरी अंदर रखदा जेते सिष्ट सब कीते एक कूड़ कुसत लाइन मनमुख वे गुती गुरमुख सदा त्याई अंदर हर परे ते जिनको पोते पुनः तिन वात सुपीते नानक नाम चाहिए सच सिवत सनाई सरो

नासत रुखे बिरखे प्राप्त थवे दुख सहे नासत हस्ते बद संगल नासत गायिका चरे जिस हथ सिद्ध देवे जे सोई जिसन दे तिस आए मिले नानक तक मिले विडाए जिस कट पेतर शब्द रवै सब कट मेरे हो सब न अंदर जिसे खुआ तिस कौन कहे जिसे दिखाला वाट अड़ी तिसे भुलावै कौन जिसे बुलाए पंद सिर तिसे दिखावै कौन महला पहला सुगृह जो निग्रह करे जब तब संयम भी क्या करे पुन दान का करे शरीर सुगृह गंगा का नीर बोले सिर

बोले पर दर्शात स्वरूप परम तंत में रेख नारूप महला पहला क्यों मार बंदा क्यों जीव जुगत कन पढ़ाए क्या खा जाए भुगत